नागरिक गुलाम नहीं पेश कर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट शांतमई ढंग नाल रोस प्रदर्शन करना हर भारतीय नागरिक का जमहूरी हक है, जिसते सुप्रीम कोर्ट ते वख वख हाई कोर्टा वालों वार वार मुहर लगाई गई है कि महज सरकार अते सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करन बदले किसी प्रदर्शनकारी ते FIR दर्ज करना ते उस दे शहर विच वड़न ते पाबंदी लगाना पुलिस का जायज कदम मनिया जा सकता है। बंबई हाई कोर्ट का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं। एक सियासी कारकुन खिलाफ मुंबई पुलिस वालों जारी शहर बदरी दे हुक्मां नूं रद्द करदिआं हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाजपा की अगवाई हेठली केंद्र सरकार के फैसलों खिलाफ मोर्चा खोलना या मुजाहरा करना अपने आप विच कोई अजिहा आधार नहीं हो सकता जिस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारां ते डाका मारिया जाए। जस्टिस माधव जे जामदार की यह तिखी टिप्पणी के नागरिकां नूं सरकार के गुलाम नहीं बनाया जा सकता यकीनन महाराष्ट्र तो पार पूरे मुल्क विच दूर तक गूंजेगी। असहमति जताना कोई गुनाह नहीं है, ये संविधान दी